0: बुंदेलखंड बदल रहा है भैया, पूरी तरह से बदल चुका है।
1: हाँ हो रहा है, बुंदेलखंड बुलंद हो रहा है।
2: किसान अपने खेती करने लगे हैं, किसान सम्मान निधि भी मिलने लगी है,
3: अच्छी व्यवस्था बन गई,
4: पानी वाली
3: सब में बड़ी बात हो गई।
5: मोदी जी ने तो चमका दिया है, पूरे बुंदेलखंड को चमका दिया।
6: बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानीदार, यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है।
7: हेलो, आई एम प्रमोद शर्मा एंड राइट नाउ आई एम इन बुंदेलखंड, the same Bundelkhand where drought became a way of life and where thousands of young people migrated in search of work.
6: Sukha yahan ki taqdeer ban gaya roji roti kamane ke liye yuva.
7: But is Bundelkhand still the same today, or has it witnessed a transformation over the past 10 to 12 years? Seeking the answer, we embarked on a journey to West Bharat.
6: Yahi janne ki aaj main koshish karunga, kyunki ye series Ek Bharat श्रेष्ठ भारत है।
7: स्प्रेड अक्रॉस नियरली 70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, बुंदेलखंड कंप्राइजेस 13 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। येट सिंस इंडिपेंडेंस, इफ देयर वाज वन थिंग दीज डिस्ट्रिक्ट्स स्ट्रगल्ड फॉर द मोस्ट, इट वाज वाटर।

0: से आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: इट्स अ रफ प्रोफेशन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड वी वर्क टुगेदर ऑन इट। दिस हैज बीन हैपनिंग थ्रू आउट टाइम, बट वी वर्क टुगेदर ऑन इट। यस सर्टेनली, वी लव ऑल ऑफ दोस पीपल, दे आर ग्रेट पीपल।
2: Prime Minister Modi also met with the Ukrainian President Volodymyr Zelensky on the sidelines of the G7 summit. The two leaders discussed efforts to restore trade ties and exchanged views on the situation in Ukraine. Later in a post, PM Modi reiterated India's support for peace in Ukraine. He wrote, and I quote him, "India will always be on the side of peace, placing the values of humanity above all."

माता की, भारत माता की, भारत की, वंदे बाजू। ऐसा लग रहा है आप सब छुट्टी के मूड में हैं। साथियों, ये पेरिस शहर लाइट्स का शहर है, ये रंगों का शहर है, यहां आर्ट है, आइडियाज हैं और इनोवेशन की प्रेरणा भी है। लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं। कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो कोई

मराठी है और कोई बंगाली है। भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है। साथियों, मैं जब 14 जून को नीस पहुंचा था तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट्स कार्यक्रम में आ गया हूं। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई, ब्रिज की संख्या भी दोगुनी, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति

इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर है, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर है, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता, वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125

0: करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा, आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांवों में भी QR कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था, लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है, जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है।
1: That's Prime Minister Narendra Modi in France, of course. He's addressing the Indian diaspora and telling them really how India has transformed in the past few years, whether it's the economic transformation of India or the social transformation, women's health care, Aadhaar, and the kind of technological innovation and transformation that India has seen in the past few years. The Prime Minister really conveying to the Indian diaspora of how the country that they left has completely transformed now and is moving with the times, whether it's manufacturing, businesses or other social sectors that have seen massive transformation and change. All right, with that, let's move on and tell you more about the Russia-Ukraine war. Russia has threatened more strikes on Ukraine after one of Kiev's biggest drone barrages on Moscow hit a major refinery, wounding 17 people and engulfing the Russian capital in thick black smoke. All of Moscow's airports were shut, leading to hundreds of flight delays. The repeated attacks, remember, raises a major question. Why is Russia unable to stop the drones reaching its heartland? Our next report gets you all the details. Take a look.
2: The skyline looked like a war film. Flames rising over Moscow region. Smoke covering the skyline. A key Russian energy facility under attack again. Kapotnia refinery in southeast Moscow was hit for the second time this week. This is the moment a drone struck a fuel storage tank, sending its roof into the air. Russia's defense ministry says that almost 1,000 drones and 4 Ukrainian cruise missiles were intercepted and destroyed across the country in 24 hours. But clearly, the devastation shows many Ukrainian drones struck their targets. The attack reveals a major chink in Russia's armor. Despite Russia's powerful air defense systems, Ukrainian drones have repeatedly managed to cross hundreds of kilometers.

0: Let's quickly cut across to France now, where Prime Minister Narendra Modi is addressing the Indian diaspora.
1: भारत माता की, भारत माता की, वंदे, नमस्ते, बांजू, ऐसा लग रहा है आप सब छुट्टी के मूड में हैं। साथियों, ये पेरिस शहर लाइट्स का शहर है, ये रंगों का शहर है, यहां आर्ट है, आइडियाज हैं और इनोवेशन की प्रेरणा भी है। भारत के अलग अलग राज्यों से आए आप सभी लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं। कोई तमिल है, कोई पंजाबी है,

0: कोई गुजराती है तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है। भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है। साथियों, मैं जब 14 जून को निष्पक्ष तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट कार्यक्रम में आ गया हूं। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम्स। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर है, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर है, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता, वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए ये 15 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स, सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा, 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूसरे गांव में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था, लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था सच्चाई है, जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है।
1: और That's Prime Minister Narendra Modi in France, of course, he's addressing the Indian diaspora and telling them really how India has transformed in the past few years, whether it's the economic transformation of India or the social transformation, women's health care, Aadhaar, and the kind of technological innovation and transformation that India has seen in the past few years. The Prime Minister really conveying to the Indian diaspora of how the country that they left has completely transformed now and is moving with the times, whether it's manufacturing, businesses or other social sectors that have seen massive transformation and change. All right, with that, let's move on and tell you more about the Russia-Ukraine war. Russia has threatened more strikes. One of Kiev's biggest drone barrages on Moscow hit a major refinery, wounding 17 people and engulfing the Russian capital in thick black smoke. All of Moscow's airports were shut for hours, leading to hundreds of flight delays. The repeated attacks, remember, raises a major question. Why is Russia unable to stop the drones reaching its heartland? Our next report gets you all the details. Take a look.

भारत के अलग अलग राज्यों से आए आप सभी लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं। कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है। भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है। साथियों, मैं जब 14 जून को नीस पहुंचा था तो सबसे पहले भारत इंडेक्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट कार्यक्रम में आ गया हूं। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया है।

0: Let's quickly cut across to France now, where Prime Minister Narendra Modi is addressing the Indian diaspora.
1: भारत माता की, भारत माता की, वंदे, नमस्ते, बांजू, ऐसा लग रहा है आप सब छुट्टी के मूड में हैं। साथियों, ये पेरिस शहर लाइट्स का शहर है, ये रंगों का शहर है, यहां आर्ट है, आइडियाज है और इनोवेशन की प्रेरणा भी है। इस शहर को भारत के अलग अलग राज्यों से आए आप सभी लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं। कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है। भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है। साथियों, तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट कार्यक्रम में आ गया हूं। फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है,

वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत इज ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम

0: व्यक्ति तक पहुंच। फ्रांस में जितने घर है, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर है, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता। वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स, सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है। किसान को डिजिटल नहीं बना रहा। आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांवों में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा। गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था, लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है। जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है।
1: That's Prime Minister Narendra Modi in France, of course, he's addressing the Indian diaspora and telling them really how India has transformed in the past few years, whether it's the economic transformation of India or the social transformation, women's healthcare, Aadhaar, and the kind of technological innovation and transformation that India has seen in the past few years. The Prime Minister really conveying to the Indian diaspora of how the country that they left has completely transformed now and is moving with the times, whether it's manufacturing, businesses or other social sectors that have seen massive transformation and change. All right, with that, let's move on and tell you more about the Russia-Ukraine war. Russia has threatened more strikes on Ukraine after one of Kiev's biggest drone barrages on Moscow hit a major refinery, wounding 17 people and engulfing the Russian capital in thick black smoke. All of Moscow's airports were shut for hours, leading to hundreds of flight delays. The repeated attacks, remember, raises a major question. Why? Unable to stop the drones reaching its heartland. Our next report gets you all the details. Take a look.
2: The skyline looked like a war film. Flames rising over Moscow region. Smoke covering the skyline. A key Russian energy facility under attack again. Kaputnya refinery in southeast Moscow at the time this week. Moment, a drone struck a fuel storage tank, sending its roof flying into the air. Russia's defense ministry says that almost 1,000 drones and 4 Ukrainian cruise missiles were intercepted and destroyed across the country in 24 hours. But clearly, the devastation shows many Ukrainian drones struck their targets. The attack reveals a major chink in Russia's armor. Despite Russia's powerful air defense systems, Ukrainian drones have repeatedly managed to cross hundreds of kilometers and hit strategic locations. Ukrainian President Volodymyr Zelensky secured renewed political backing from G7 leaders as Kyiv continues pushing its message.

0: first in-person meeting with the U.S. president in over a year.
1: Our nations, but it really starts with the two of us.
2: Thank you
1: very much.
2: Thank you.
1: Thank you. Thank you. Any questions?
0: Prime Minister Modi told U.S. President Donald Trump that the safety and security of lakhs of Indian seafarers is of paramount importance to India.
2: Excellency, आप जानते हैं कि maritime trade की दुनिया में भारत लाखों seafarers आज दुनिया के अलग-अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है. मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी.
1: इट्स अ रफ प्रोफेशन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड वी वर्क टुगेदर ऑन इट. दिस हैज बीन हैपनिंग थ्रू आउट टाइम. But we work together. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people.
0: And Prime Minister Modi also met the Ukrainian president on the sidelines of the G7 summit. The two leaders discussed efforts to restore trade ties and exchanged views on the situation in Ukraine. Later, in a post on X, Prime Minister Modi reiterated India's support for peace in Ukraine. He wrote, I'm quoting, India will always be on the side of peace, placing the values of humanity above all.

0: The research reportedly suggests that in the early stages of romance, the brain basically treats a romantic partner as a uniquely rewarding person and activates neural systems involved in craving and motivation, which helps explain perhaps why falling in love could sometimes feel like a bit of an addiction. Two brain areas were especially active, basically. When participants anticipated seeing their romantic partner, the part of the brain's reward system, this may explain why people strongly want to spend time with someone they are falling in love with. Also, a region linked to urges, cravings, and awareness of feeling. Activity in this area was associated with more intrusive thoughts about a partner. Explain why people in early love cannot often stop thinking about that other person. Basically, the study suggests that romantic infatuation and addiction may use some of the same brain circuits, which helps explain why early love can feel intense, obsessive, or perhaps even consuming. However, the researchers are not saying that love is a substance addiction as such. The findings provide a biological explanation for common experiences like constantly thinking about someone new, feeling a strong desire to be near them, finding it difficult to focus on other things perhaps, so on and so forth. It's also important to point out here that the study only looked at young men in new heterosexual relationships. So the results may not apply equally to women, older adults, or people in different kinds of relationships. So the next time you find yourself feeling like love is feeling like an addiction, you could perhaps know that this is what might be happening. Right, let's just take a look at these visuals coming in from Paris of the grand reception and the warm welcome that was offered to the Indian leader.
1: भारत माता की भारत माता की वंदे नमस्ते बांजू ऐसा लग रहा है आप सब छुट्टी के मूड में हैं साथियों ये पेरिस शहर लाइट्स का शहर है ये रंगों का शहर है यहां आर्ट है आइडियाज है और इनोवेशन की प्रेरणा भी है इस शहर को भारत के अलग अलग राज्यों से आए आप सभी लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं नए नए रंगों से भर देते हैं कोई तमिल है कोई पंजाबी है कोई गुजराती है तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है साथियों मैं जब 14 जून को नीस पहुंचा था तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट कार्यक्रम में आ गया हूं फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है। मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं। इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया।